नानक अंतरा जपनी हर ता के परावार आपरे साखती फिर आप कराए मार एकना एकना गली जंजीरिया तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हाँ कैसे हो करी पुकार।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितो ज कही जय कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गणिजय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जग और न जाहे महातम मैं अवतार जागर आन किया तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पिया एह पद्धत ते मत चूक है रे मन भेद विभेद न जान बिया प्रत्यक्ष हृदय गुर अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो प्रत्यक्ष हृदय गुर अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो चंद चकोर प्रीत है लाए तार निहाले चकवी सूरज हेत है मिलोन सुखाले नेहो कवल जल जानिए खिड़ मोह वे खाले मोर बबीह बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पीर मुरीदा पिरहड़ी ओह निभ नाले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पीर मुरीदा पिरहड़ी ओह निभ नाले सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जा
ਸਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ

सोरठ महला पंजवा कर पहला तेतु के एक ओंकार सतगुर प्रसाद किस हो जाची किस आराधी जा सब को कीता होसी जो जो दिसै वड्डा वडेरा सो सो खाकू रलसी निरपौ निरंकार पव खंडन सब सुख नवनिद देसी किस हो जाची किस आराधी जा सब को कीता होसी जो जो दिसै वड्डा वडेरा सो सो खाकू रलसी निरपौ निरंकार पव खंडन सब सुख नवनिद देसी।

0: अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दसन दास तुदे अगे बिनवता
1: चरण कमल का

पौड़ी बड़ी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तवा, रंग परंग अनेक ना जापन करतवा, जिया अंदर जियो सब की जान ला, सब कुछ तेरा वस तेरा कर भला, तेरे कर आनंद बधाई तुद कर, माण महत्ता ते दे अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दा संदास।

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाएंगे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तेरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने हो। सिमत शास्त्र वेद स्वै बहु भेद कहें हम एक ना जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर,

आवे। चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिबा तहां तहां रच्छे आरे आए ता। देग तेग फतेह बिरद।

जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा। सज्जन सच्चा पात साहु सिर सांदा।

कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा। वड़े वड़े आई अचारज सोबा,

सागले दुख विनाशे वडी वडियाई अचारज शोभा कारज आया रासे नानक का गुर पूरा भेटियो सगले दुख विनाशे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

दास है सुख मांगे मोकौ कर संतन की धूर अंतर जमी पुरख विदाते सरदा मन की पूर नानक दास एह सुख मांगे मोकौ कर संतन की तूर।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्वसू

सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे दुध आख है लख करोड़।

0: अग अंतक बदन सलकव गुर रामदास तेरी शरण।
1: ज्योत रूप हरे आपे गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो तत स्यों तत मिलायो। अंगद कृपा तारे अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमरत छत्र।

अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पुले सोत दारा से प्रीतन उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक

सुकहु टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसंदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह शीर्षांद शाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसाहो सज्जन सच्चा पातशाह शीर्षांद शाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना

सोरठ महला तीजा। हर जियो तुद नो सदा सालाही प्यारे, जिचर घट अंतर है सासा। एक पल खिन विसरह तू स्वामी, जानो बरस पचासा। हम मूढ़ मुग्ध सदा से पाई, गुर के शब्द प्रगासा। हर जियो तुद नो सदा सालाही प्यारे, जिचर घट अंतर है सासा। एक पल खिन विसरह तू स्वामी, जानो बरस पचासा। हम मूढ़ मुग्ध सदा से पाई, गुर के शब्द प्रगासा। हर जियो तुम आपे देहो बुझाई, हर जियो तुद विटहो वारिया सद ही। तेरे नाम विटहो बल जाई, रहाओ हम शब्द मुए शब्द मार जी वाले पाई। शब्दे ही मुक्त पाई, शब्दे मन तन निर्मल होआ। हर वस्या मन आई, शब्द गुरदाता जित मन राता। हर स्यों रहया समाई, शब्द न जाने से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रस न पाया बिरथा जन्म गवाया, जम्मे वारो वारा। बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने, मनमुख मुगद गुबारा। आपे कर विखै मार्ग लाए पाई, तिस बिन अवर न कोई। जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै पाई,
करता करे सो होई। नानक नाम वसिया मन अंतर पाई, अवर न दूजा कोई। आपे कर विखै मार्ग लाए पाई, तिस बिन अवर न कोई। जो तुर लिखिया सो कोए न मिटै पाई, करता करे सो होई। नानक नाम वसिया मन अंतर पाई, अवर न दूजा कोई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सोरठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सालाही प्यारे, जिचर घट अंतर है सासा। एक पल खिन विसरहे तू स्वामी, जानो बरस पचासा। हम मूड़ मुगद सदा से पाई, गुर के शब्द प्रगासा।

तख तां सर्वत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे प्रथम सर्वत खालसा जी की अरदास है जी।

दर्शन स्नान चौकियां झंडे डूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जिया श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारे गुर धामा दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान ने उटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीआ जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जी आओ सरबत साध संगत नू अपने दरों करों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ पावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवा ना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने।